गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे।

एक पद गंध बिन सहज तव गंधे विचलत मोही, सब मह जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस पावे सो आरती होए, हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अंदिनो मोहे आही पियासा, कृपा जल देहे नानक सारंग को होए, जाते तेरे नाए वासा, राग गोड़ी पूर्वी महल्ला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडोत पुन वड्डा हे, राहो साकत हर साधन जानिया, तिन अंतर हव मैं कंडा हे, ज्यो ज्यो चला है चुबह दुख पाव है, जमकाल सह सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, भव सोभ खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वडवड्डा हे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे, राग गौड़ी पूर्वी महल्ला पंजवा, करो बिनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसंत सोहेला, ओद घटे दिन सरैणा रे, मन गुर मिल काज सवारे, राहो इहो संसार विकार संसे मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पियावे इहो रस, अगत कथा तिन जानी, जाको आए

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वा

जिन कल राखी मेरी सुख हो टल गुर सेविया एहन सो सहज सुपाए दर्शन परस्यां गुरु के

आखर किन काय जय जी बसावै तांकी महिमा कनि नयावै कांखी एकै दरस तुहारो नानक कुन संग मोहे उदारो सुखमनि सुखमर प्रभु नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टराय प्रभ सिमरत कछ बिगन्ना लागै प्रभ कै सिमरन आंदन जागै प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सरवण दान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ सुनाने प्रभ कै सिमरन दरगाह माने प्रभ कै सिमरन होय सो भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जन आप सिमराए नानक तां कै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सबसे ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरै मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सबके सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माहे समाए प्रभु जी बसै साधके रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरन।

पोतजन हर रस राते सुन सुमाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का पग प्रगण नहीं छपै हर की भगत मुक्त बोकाराय नानक जन संकेत तैराय

मदे फिरया। अनेक प्रकार की है वो जतना, पुण्य दान हमे वो रतना, शरीर कटाए हमें कर राते, वर्तने कराए बहु पाते।

अग्नमय होमत्परान कनकासवैवरपुं दानान्योलिकर्म करे भवासन जैन मार्ग संयम साधन निम

निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सत्संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पलार का नाम जपो जी सदा।

ज्ञानक सीजे परसा तरु पर सुख बसाय सुत पर आत्मित बनता संग हसाय जय परसा पी में शीतल जला सुखदायी पवन पाव कामुला जय परसा पोग सब रसा सग समग्री संग सास बसा दीने हस पाव करने तरस नाम तिसे त्याग वर

जिसके बस सागर रखा है प्रभु की आज्ञा मन है माथा है उसे चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक

मन हर के नाम के प्रे सुखदायी कर कृपा नानक आप लैलाये मिथ्या तन तन कुटम सुबाया मिथ्या हूँ मैं ममता माया मिथ्या राजो बन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता

खाए। जय प्रसाद करा पुनुभव दान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तो आचार्य बिहारी तुझ प्रभु को साथ साथ चितारी।

प्रव्याहकरे ब्रह्मज्ञानी सकल आत्मरब्रह्मज्ञानी चिन्ना ब्रह्मज्ञानी के सब परमया ब्रह्मज्ञानी ते कज बुरा न पाया ब्रह्मज्ञानी

ब्रह्म ज्ञाने सोचा निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिना ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म

बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाय, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाय दाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गल ब्रह्म ज्ञानी जाना, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मगो जुग जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म

मिथ्या नाहि रसना परस मन में प्रिय निरंजन दर्श परतरिया रूप न पेख नेत्र साख टैल संत संग हेत करना सुन काव की निंदा सबते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मन ते टराय इंद्र।

तात कई कोड़ किए रतन सामंद कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ किए चर दिवे कई कोड़ ग्रीमर स्वरण थी वे

परवान कोट कर्म करे हो तारे स्वरम पावे सगले फिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वरूप फिर अवतार अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा कामन होए कह नानक तंके निर्मल सोए जब लो जाने मुझे कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जाबे जाने मैं किस करता तब लो गर्व जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीर तब लो निचल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लो तरम राय देश सुधाए

संत का दुखी अल बीते टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुंचे संत का दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते तो ज्यों साल बिना मृत की लोता संत के दुखी के जड़ कित ना है आपन बीजा पे ही खा है संत के दुखी को अपन रखन हार नान सद पावे ते उबार संत का दुखी बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भुखा नीरा दे जो पाव कि निद्रा पे संत

कोय उत्तर मर्म कर निरंकार कर्म मेरे सत व्यवहार निर्मल रचनामृत प्रियो सदा सुहेला कर लियो नैनो पिकटा कुरकार रंग सत्संग विनसे सब संग

अपनी मत गत जिसके सिर सो करने हार वरना बोझ करत विचार करते कीमत न जाने किया नानक जोत पावे सो वर्ती आ बिस्मन बिस्म पै बिस्माजन बुझिया ते साया स्वाद।

का पर्दा ढाके अपने सेवक के सर पर रख है, अपने दाको देव बटाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे ताकि कदम को ना रखे, प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक को ऊंचे ऊंचे

सुकर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतन मंथन में नाम समय उठत बैठ सोवत नाम कौना ने जन के साधु काम

संत जनाम करो विचार एक समर नाम आधार अवर उपास समित बसारो चरण कमर मायुर तारो कर्ण कर्ण सोप्र समरात दृढ़कर गो नाम अरवाथ ये होतन संचो भगवंत संदन का नरमंत एकाश राखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जय सन को चार कुंड उठता में सोतन हर सेवा ते पावे जय सुख को नित बाछ मीत सुसु साधु संग परित जय सुशोभा खो

अष्टपद जब आकार कथना दृष्टता पाप अपन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध के सुसंग कमात दब इसका वरण

मित्र सुत भाई जय सर्वकला पे परवीन तय वेद का को चीन। जब अपने आप आपुर धारे तब सगन अपसगन का विचारे। जय अपन ऊचा अपन अवनेरा ते कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। विश्व

का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मानंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया सात सिमरत वेद नानक भगता सदा मिंगास सुनया दुख पाप का नास सुनया।

अच्युत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, पीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजंग प्रयाशंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेहवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपहुणे, अनंगी अनाथे निरसंगी प्रमाथे, नमो पाण पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पाण पाने, नमो

संभाति स्वरूप प्रपंगी परमाथे संभाति विभुते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजे स्वरंग परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे।

काम आद दो पर चंड मित गाते अखंड अलिसे कर्म दृश्य धर्म सर्वा प्रनाड अंडड बाड चारी शांत वे प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंग करि अंग ने नामे कामे पजांग प्रयाशंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र जाने चतर चक्र चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले

अदिसे अदृश्य अकृश्य भगवती शांत वै प्रसाद कहते क्या छेज देश है क्या भिज भिहसे क्या गंज करमे क्या पंज भरमे क्या भिज लोक कै के दित सो कै के बतहूत वरण है के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है क्या सोग भरने के सर्वा अपरने

चित चरण नाम जिंगात राजात अंच जिंगात हर राजबात कर कर प्रणाम चित चरण नाम अणस जिगात आज ना बात अंच जिगात अन रज बात अन टुट भंडार अंठट अपार आडीश धर्म अदीश कर्म अन भरण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत वे प्रसाद करुणालय है हर कालय खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व उबारण है तृत के तरण है जग के करण है

गारे गुंजत गुण गजान के सुंदर सती है राज हजारे पुहत पवेख पवान के पुहत कौन गन नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिनवंत कुवंत के तहम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेखे वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सुबान के पेखे

राज करेंगे। कोट सनानक जात दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विहन सचिपत अंत फस जम फास भरेंगे।

हे बचाव सुखी बसे मोर परिवार सेवक सिख सब करतार मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैर को आ संघरिए।

मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अह तो जू करे हम रक्षा।

तर सब हूं जेते बदन सृहित सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही तेरा तेरा आलम जानत भेद भेद अर आलम।

पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकते नह आए हैं।

करे कहानी अकथ केरी केत दुआरे पाइये तन मन धन सब सब गुरु को हुक्म मन पाइये हुक्म मनहो गुरु के रंगावो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संत कथियो अकथ कहानी ए मन चंचुला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिनेत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटहो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाईए संका मूले न कीचे जिते अंत पछताईए सात गुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले

संजमतो ता जाय मन तो वो शब्द लागो हर सेवर हो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजय इह सहसा में जाय जियहु मैले बारहु निर्मल बारहु ता निर्मल जियहु निर्मल सतगुर जियो मैले बारहु निर्मल बारहु निर्मल जियहु ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया।

जड़ाऊ सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख से बजाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सिउले बिलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए

मिलया देव दृष्ट होई। ये श्रवण हो मेरे हो साचय सुन नैनो पठाए, साचय सुन नैनो पठाए, श्री लाए सुनो सतबाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी। सच अलख विडाणी ताकि गद कही न जाए, कहे नानक अमृत नाम सुनो। पवित्र हो बो साचय सुन नैनो पठाए,

छेद्य ते। पेशेवर शिकारी साध संगत जी, पेशेवर शिकारी मीन जिसका शिकार करना पेशा है, शिकार करना उसकी किरत है, शिकार करना उसकी जॉब है। वो जिहड़े जानवरां नूं मारदा है, उन्हां दा गोश्त वेचदा है, उन्हां दी खलड़ी वेचदा है। हिरनी आदक बारह सिंगा आदक मार लवे ते उस दे सिंग भी वेचदा है। सोने दे भाव विकदे ने बारह सिंगा पसम। सात संगत जी, एक सीख गिली करके ना, सीख गिली करके उस दे पाउडर विच थोड़ा जिहा नूं लपेट के खा लईए ते वी 25-30-40 डिग्री माइनस टेंपरेचर विच खड़े हो जाओ ते ठंड तुहाडे दुआले नहीं फटक सकदी। इन्ना वो कारगर ए ह्यूमन बॉडी वास्ते, सर्दी का मुकाबला करने वास्ते है। बड़ा महंगा विकदा है। वो शिकारी वो सिंगां दा पसम बना के भी वेचते ने, जां बाजार विच सिंग ही वेच, पेशेवर शिकारी है। जानवरां नूं मारन दा उहदे कोल सारा इंतजाम है, उहदे कोल जाल भी है, उहदे कोल तीर कमान पत्था भी है, उहदे कोल शिकारी कुत्ता भी है। मैं तां बेनती कर रहा भी गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह ने अज साध संगत जी साडे डोलदिया मना नूं थम्मी दित्ती है। कदी सानू रिजक दी चिंता हुंदी है, कदी सानू बीमारियां दी चिंता हुंदी है, कदी सानू अपने भविख नूं लैके चिंता हुंदी है, साडा की बनेगा। सो गुरु साहब बख्शिश करदे बई तू अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच जोड़, अरदास कर। वो इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है, इतना समर्थ है, वो तेरे सारे दुखां दा नाश कर सकदा। दास का दुख बिदारे, हर जन राखे गुर गोबिंद। गुरु गोबिंद अपने जन की राखी करदा। किस तरह राखी करदा? साध संगत जी, आप जी की खुशी लैण वास्ते मैं ये प्रमाण आप जी नाल सांझा कर रहा। मिर्गी पेखंत बदक प्रहारेण लख्य आवध है। वो घरों निकलिया, जंगल विच गया, गर्मिया की रुत, शिखर दोपहर, तत्ती लो वगे, सवा नेजे दे उत्ते सूरज यानी बिल्कुल सिर दे उत्ते। तुहाडे इत्थे ते

ते खंत बदक प्रहारेण लख्य आवद अहो जस रखेन गोपाल एदे अर्थ ने आह जिनू रब रखे नानक रोम ना छेदते भाई ओदा कोई रोम भी नहीं छेद सकता ओदा कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकता जिनू परमात्मा रखण ते आवे। दूसरे पासे कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर होवे बड़ा तनाड़ होवे उन्हें अपने बचाव वास्ते बड़े प्रबंध किते हों सब तो पहला प्रबंध उन्हें उच्चे पहाड़ां दे उत्ते जिथे किसी की पहुँच ना होवे जां बड़ी औखी पहुँच होवे उत्थे अपनी रिहायश कीती होवे अपने आप नूं बचाण दे ओह बड़े जतन करदा होवे। हजूर ने लिखिया बहुत जतन करता बलवंत कारी बलवंत बल वाला है ताकत वाला है और अपने आप नूं बचाण दे यतन भी बहुत करता है अवेर भी बहुत है भी हाय मैनू कोई मार ना दे इनू इंज लै लो सेंस ये है बहुत जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिशा इने को सूर में उन्हें अपने अंग रक्षक रखे हुए ने अपनी सेवा विच तैनात किते हुए ने बे जिवें अपने दुआले उन्हें एक किस्म की इस्पात की लोहे की दीवार बना ली होवे ओ एडे एडे सूरमे ने एडे एडे वड्डे जांबाज ने ओ ओदी रख्या करदे ने। बिखम स्थान बिखम थान बसंत ऊचै नय सिमरंत मरणं कदाचै श्लोक सहस्कृति महला पंजवा। बिखम मैंने औखा जेड़ा उबड़ खुबड़ा रस्ता है उत्ते उच्चे पहाड़ दे उत्ते उन्हें रिहायश बनाई हुई है सात संगत जी उत्थे हर एक दी पहुंच नहीं है। बिखम थान बसंत ऊचै नय सिमरंत मरणं कदाचै मौत उन्हूं कदी चेता ही नहीं आई भाव वह निश्चिंत है भी मैनू कोई नहीं मार सकता। पर हजूर कहिंदे ने होवंत आग्या भगवान पुरख है नानक कीटी सास अकर खते जदों अकाल पुरख की आग्या हुंदी है जदों अकाल पुरख का हुक्म हुंदा है ते एक कीड़ी उहदे साह खिंच लैंदी है फिर उन्हूं कोई बचा नहीं सकता। भावे है कि नीकी कीरी मैं कल राख है पसम करे लश्कर कोट लख है छोटी जी कीड़ी विच ओ ताकत रख दे ते ओ करोड़ां लश्करां नूं निस्तो नाबूत कर सकदी है। जिसका सास ना काढ़त आप तां कहो राखत दे कर हाथ जिनू ओ आप ना मारे ओनू कोई मारन भी आवे ते हाथ दे के बचा लैंदा भी इहदा अजे समा नहीं आया। फिर महाराज गल ही मुका देंदे ने इको वाकिया विच

जप नानक प्रभ अलख विडाणी। इस वास्ते अज हजूर ने हुक्म फरमाया, कह लगे चतुर दिशा चौहां दिशावां विच चौहां पासियां विच चार ही पासे ने सात संगत जी, पूर्व पछम उत्तर दखण। किसी गुरबाणी दे जानकार दे मन विच विचार पैदा होया होवे, उह कहे ज्ञानी जी गुरबाणी विच दस दिशा भी लिखियां ने, दह दिस खोजत मैं फिरियो। तुसी कहिंदे हो चार ही दिशा ने, फिर वह दह दिस केड़ियां ने? मूल रूप विच चार ही दिशा ने, यह दह दिस बन जांदियां ने जदों चार दिशा पूर्व पछम उत्तर दखण चार उहदे कोने, चार ते चार अठ, एक पताल ते एक आकाश, अठ जमा दो बराबरे दस। कदी कदी इंज भी लिखिया। आ जिहड़ा न्यूज शब्द है इहदे वास्ते भी कुछ विद्वान कहिंदे ने दिशावां तों लिया गया, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डबल्यू फॉर वैस्ट ते एस फॉर साउथ। न्यूज समाचार खबरां ਉਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਨਿਊਜ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਖਬਰਾਂ।

अपने उस मालक अकाल पुरख वाहिगुरु तो जो जो मंगिए सो सो मिलता। असी उहदे कोलों पदार्थ मंगने आ, दाता मंगने आ, कोई हर्ज नहीं। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। गुरु अर्जन साहब महाराज सानू जाच दसी, सानू आग्या भी दे दी बई भाई तुसी इस तरह भी अरदास कर सकते हो। भावे मांगना मांगण नीका हर जस गुर ते मांगना, असल मंग वैसे ओ ही है। ये मंगा ने ताकि नाम जपण का वातावरण बन सके, एक माहौल सिरजिया जा सके, मेरा दिल जहा भी लगा रवे। या धन जोबन अर सुत दारा पेखण खोजो दयो, इन्हां नूं मैं देखदा रवां, थोड़ा जिहा प्रसन्न जिहा भी रवां और निर्लेप भी इन्हां विचों रवां, सुरत मेरी तुहाडे नाम विच लगी रवे, ते उंज मैं इस तरह मेरा मनोरंजन का प्रबंध भी थोड़ा जिहा तुसीं इस तरह का कर छड्डो। असल ते मनोरंजन यही है ना सतसंगत, बाग परिवार होवे, उहदे विच मनुख बवे, हसे खेडे, दुख सुख करे।

सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे सदा शिव साला तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शां सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनाओ संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुख हुआ तित कर आनंद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते।

दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास राम दासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आय जिस जिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नि दयावे ताय सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता

0: दर कदे न छोड़े, टाढ़ी दर ब्रह्मंगना दर कदे न छोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सच भोजन जोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ओ ए हस्ती कोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ओ ए हस्ती कोड़े, राज मिलक खुशियां कणी त्याए मुख न मोड़े, राज मिलक खुशियां कणी त्याए मुख न मोड़े,
1: टाडी दर पर
0: मंगणा दर कदे न छोड़े, टाडी दर पर मंगणा दर कदे न छोड़े,
1: नानक मंतन चाओ एहो
0: नित प्रभ को लोड़े, नानक मंतन चाओ एहो नित प्रभ को लोड़े।
1: धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सिंह, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत, तू ठाकुर ऊच भगवान, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव सिंह, तू ही निरंकार, तू सदा सलामत, तू ठाकुर ऊच भगवान, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन बाबा नाम सिंह जी महाराज, धन धन बाबा नाम सिंह जी महाराज, कोट कोट पढ़ भुल चुक माफ, तेरे चरण कमला पास, बहुत बहुत धनबाद, नानक नाम चढ़ने का तेरे भाने स्वागत, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल,
2: सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ, तुम दाती ठाकुर प्रद पालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रद पालो, हम मार्ग तुमरे तारे, सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा दे साहू, जिस पास बैठिया सोही है सवरा दावे साहू, जिस पास बैठिया सोही है

0: दीना।
1: हर हर जन कहे और सतानी,
0: हर प्रताप जन अवर न जानी।
1: ओत पोत जन हर रस राते,
0: सुन समाध नाम रस माते।
1: आठ पहर जन हर हर जपे,
0: हर का भगत प्रगट नहीं छपे।
1: हर की

0: नित्या सर्वन पर निंदा सुने
1: नित्या हर पर दर पोहरे
0: नित्या नेत्र पिखद परतरिया रूपाद
1: नित्या रसना भोजरे अन्न स्वाद
0: नित्या चरण पर विकार को धावे
1: नित्या मन पर लोभ लभावे
0: नित्या तन नहीं पर उपकारा
1: नित्या बास रेत बेकारा
0: बिन बूझे

0: संग अजर सहे
1: साध संग बसे धान उचे
0: साधु के संग महल पहुंचे
1: साध संग दृढ़े सब धर्म
0: साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए

0: नानक सच कहे।
1: होए पंडित करे बखियान,
0: कबहु मोल तारी आवे ध्यान,
1: कबहु तट तीर्थ स्नान,
0: कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कबहु कीट हस्त पतंग होए जिया।